0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कैनेडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह, इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज, इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है।

सर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से शेदाम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे।

0: AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ सम्पन्न होगी।
3: सत्तावन दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महान दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
4: महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
5: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि

0: चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
2: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित, नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले। नवभारत टाइम्स की खबर है, पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो। लोकसत्ते की सुर्खी है, ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours।
1: नमस्कार, इस समय ठीक 8:40 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम मस्त मुंबई का। मैं हूँ आरजे किरण वाला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: रेस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: 8:46 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे किरणमाला। तो दोस्तों, आज पूरे भारत में खास त्यौहार मनाया जा रहा है, भाई और बहन के प्यार का त्यौहार। तो आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, भाई अपनी बहनों को प्यार से कोई ना कोई गिफ्ट या कुछ नगद पैसे देते हैं। तो व्हाट्सएप के ज़रिए, जी हाँ व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बताएं कि आज के दिन किसी भाई यानी किसी भाई को अपनी बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए, या आज के दिन बहनें अपने भाइयों से किस गिफ्ट की उम्मीद कर सकती हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

जी समय ठीक 8:58 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग पिछले 38 वर्षों से राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़े मिथकों को दूर करना है। इस दिन विभिन्न स्थानीय और केंद्रीय संगठन एक साथ मिलकर लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित और शिक्षित करते हैं, जिससे उनके जीवनकाल के बाद भी एक स्थायी प्रभाव पड़ता है और ज़रूरतमंद लोगों को दृष्टि का उपहार मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। दृष्टि रोजमर्रा की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही साथ सांसारिक सौंदर्य प्रदान करने में भी सहायक होती है। तो बढ़ते हैं हम अगले गाने की ओर, लेकिन कुछ ही पलों में

इस समय ठीक 9:01 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है, तो आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताजनों तो हमें व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

0: सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

9:07 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आरजी किरण माला इस समय आपके साथ। तो दोस्तों, नेत्रदान का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे कि दान की गई एक जोड़ी आँखों से दो दृष्टिहीन व्यक्तियों को दुनिया देखने का अवसर मिलता है। ये किसी के जीवन से अंधकार मिटाकर उसमें उम्मीद की नई किरण जगाता है। मृत्यु के बाद भी आपकी आंखें इस दुनिया में जीवित रहती हैं और दूसरों के माध्यम से देखती है। और नेत्रदान महादान, अंधेरे जीवन में लाए मुस्कान, मरने के बाद भी दुनिया देख सकेंगे हम। नेत्रदान करके किसी की आंख बनेंगे हम। नेत्रदान है सबसे महान, इससे बड़ा ना कोई वरदान। आंखें हैं अनमोल रतन, नेत्रदान करो जतन। रोशनी का तोहफा दे, इस दुनिया को खूबसूरत बनाए, नेत्रदान का संकल्प ले।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

9:18 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज भारत के एक बहुत ही मशहूर कवि लेखक फिराक गोरखपुरी की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वैसे उनका असली नाम रघुपति सहाय था। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और इसके लिए उन्हें 18 महीने की जेल भी हुई थी। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने अपनी कविताएं उर्दू में लिखी। भारत सरकार ने उन्हें 1868 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनकी लिखी हुई कुछ गजलों को मशहूर गजल सिंगर जगजीत सिंह ने बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया, जिन्हें आम लोगों ने भी बहुत पसंद किया।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो हमारे एक श्रोता है जिनका नाम है दिवाकर शिनॉय मैंगलोर से। वो लिखते हैं कि बहन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वो है कि उन्हें जिंदगी भर प्रोटेक्शन देना।

और प्यार से प्रोटेक्शन देना, उनकी हेल्प करना, उन्हें सहायता करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनकी नज़र में ये है गिफ्ट अपनी बहन के लिए, यानी प्रोटेक्शन देना। जी बहुत बहुत खूबसूरत बातें लिखी है आपने। और ऐसे एक और श्रोता है जिन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है अपनी बहन के लिए, कि वो लिखते हैं कि आज के समय में राखियाँ जैसे कि हम पहले घर जाकर बांधते थे, लेकिन अब समय वो आ गया है कि मोबाइल ऐप आ गया है जिसे राखी मोबाइल पर भेज देते हैं और मोबाइल पर ही हम गिफ्ट भी भेज देते हैं, यानी ऑनलाइन गिफ्ट। तो ये चलन अब देखने को मिलता है और इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे समय बदल रहा है, रक्षाबंधन हो या कोई त्यौहार हो, उसमें भी बदलाव आ रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई और आप हो मेरे साथ इस समय आरजी किरण माला के साथ। तो दोस्तों 2016 में फिल्म आई थी सरबजीत। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक गांव में रहने वाला गरीब किसान रात के अंधेरे में गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान आर्मी उसे गिरफ्तार कर लेती है, उस पर जासूसी के झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और जेल में डालकर टॉर्चर किया जाता है। अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए और वापस भारत लाने के लिए उसकी बहन हर तरह से एक लंबी लड़ाई लड़ती है। इस सच्ची घटना पर ये फिल्म सरबजीत को बनाया गया था।

9:50 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। तो इस फिल्म में भाई का रोल रणदीप हुडा ने किया और बहन का रोल ऐश्वर्या राय ने किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे ओमांग कुमार। जब उन्होंने ऐश्वर्या राय को बहन के रोल के लिए कास्ट किया था तो लोगों ने कहा था कि ये गलत कास्टिंग है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले को नहीं बदला। बाद में उनका फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ। रणदीप ने इस रोल को करने के लिए लगभग 28 दिनों में 18 किलो वजन कम किया था। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब, दिल्ली और मुंबई में की गई। इसकी कुछ शूटिंग वाघा बॉर्डर पर भी की गई थी। शूटिंग के लिए सरबजीत का घर मुंबई के गोरेगांव में आरे कॉलोनी में बनाया गया था। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय ने भाई बहन के भूमिकाओं में जान डाल दी थी। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स मिले। इस फिल्म का बजट था 15 करोड़, लेकिन इस फिल्म ने 40 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। फिल्म के गाने भी बहुत पसंद किए गए। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया। रणदीप हुड्डा ने कहा था कि सरबजीत के रोल को करना बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था। इस फिल्म के दौरान रणदीप हुड्डा सरबजीत की बहन, उनकी पत्नी और उनकी बेटियों से कई बार बहुत अच्छी तरह से मिले और उनके दर्द, उनके साहस, उनकी उम्मीद को बहुत करीब से महसूस किया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, इस समय ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नेपाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महाराष्ट्र के कम 114 पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि इनमें 53 पर्यटकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। महाराष्ट्र सहित देश भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। त्यौहार के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेस्ट आज मुंबई और उपनगरों में 136 अतिरिक्त बसें चलाएगा। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच कल दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

इस समय ठीक 10:02 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम नमस्ते भारत का। मैं हूँ आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम नमस्ते भारत में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस त्यौहार की चर्चा बार बार आती है। इतिहास में भी ऐसे कई सारे किस्से हैं जब एक महिला ने राखी बांधकर किसी को अपना भाई बनाया और भाई ने अपनी बहन की सहायता की, उसकी रक्षा की। तो भाई बहन के प्रेम के इस पावन त्यौहार के आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।

रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 10:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। और आज नमस्ते भारत का शीर्षक है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। तो इसी तरह एक ऐसे गांव में हम आपको ले जाएंगे जहां पर रक्षाबंधन बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है, उसी के बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

10:16 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि हमने कहा कि आज पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं या जिन लड़कियों के भाई नहीं होते वो राखी बांध कर भाई बना लेती हैं। ये परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है, इसके बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भारत के झारखंड में आदिवासी जाति की महिलाएं इस त्यौहार को बिल्कुल नए ढंग से मनाती हैं। ये महिलाएं पेड़ों को राखी बांधती हैं और पेड़ों की रक्षा करने का प्रण लेती हैं। इस तरह से ये महिलाएं रक्षाबंधन मनाती हैं। तो सुनते हैं यहाँ पर एक गाना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।

10:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। जी हाँ, झारखंड में एक जिला है पूर्वी सिंहभूम। इसमें एक जगह है चाकुलिया। यहाँ पर एक जंगल है जिसका नाम है सुनसुनिया। इस जंगल की आदिवासी महिलाएं सिर्फ भाइयों की कलाई पर ही राखी नहीं बांधती हैं, बल्कि रक्षाबंधन के दिन आदिवासी महिलाएं खास तरह के पारंपरिक वेशभूषा पहनती हैं। सब एक साथ जंगल के अंदर जाती हैं, पेड़ों को भाई मानकर उन्हें बांधती हैं राखी और हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन लेती है। इस अनोखी परंपरा का नेतृत्व करती है जमुना टुड। जमुना जी को इस काम के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। महिलाओं के लिए पेड़ यहाँ पर सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, साथ ही साथ उनके लिए रोजगार का साधन भी है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

10:33 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। रक्षाबंधन के दिन इस जंगल में उत्सव का माहौल बन जाता है। आदिवासी महिलाएं पारंपरिक गीत गाती है, संगीत के साथ नृत्य करती है और पेड़ों के चारों तरफ घूमती है। इस त्यौहार में उनकी संस्कृति, उनकी सोच और लोक संगीत की झलक दिखाई देती है। वन विभाग के अधिकारी और आसपास के लोग भी उनके इस उत्सव में खुशी के साथ शामिल होते हैं। राखी बांधने के बाद पेड़ों की आरती भी की जाती है। आप समझ सकते हैं कि पेड़ों के लिए यानी प्रकृति के लिए इन लोगों के दिलों में कितना सम्मान है। महिलाओं का वचन सिर्फ एक दिन तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो जंगल की सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानती है। पेड़ों की कटाई ना हो, इसके लिए ये आदिवासी समाज हमेशा बहुत ही सजग रहता है।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे किरणमाला। तो समय हमें बता रहा है कि अब मेरा जाने का समय हो गया है और हमारे स्टूडियो में हमारी दूसरी आरजे यानी 11 बजे वाली आरजे जिनका नाम है माला, मेरा नाम है किरणमाला और उनका नाम है माला, वो आ गई है अपने खूबसूरत बातों के साथ और खूबसूरत गानों के पिटारों के साथ आ गई है और बहुत ही उत्साह के साथ बैठी है कि कब 11 बजे और कब मैं माइक ले लूं। तो चलिए सुनते हैं इस चंक का ये आखिरी गाना और इसी गाने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 11:37। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। विभाग के अनुसार इस दौरान मुंबई के आसपास के पालघर, पुणे और रायगढ़ में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान ठाणे जिले में मध्यम बारिश हो सकती है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी. न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7. सिर्फ आपको धरती पर रहना होगा और ऐप को डाउनलोड करना होगा और आप हमें सुन पाएंगे लाइव रेडियो के माध्यम से. तो भाई एफएम रेनबो आज है शुक्रवार और सिर्फ शुक्रवार नहीं है, आज का दिन भी है खास क्योंकि आज हम बहनें जो हैं रक्षाबंधन का त्योहार मना रही हैं और भाई भी मना रहे हैं. तो भाई कलाई पर बंधा ये छोटा सा धागा इतना कुछ कैसे कह देता है. रक्षा का वादा, बचपन की शरारतें, वो लड़ाइयां जिनका कोई हिसाब नहीं और वो रिश्ता जिसमें माफ करने की कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती. रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा का ये पर्व सिर्फ राखी बांधने का दिन नहीं, रिश्ते को फिर से याद करने का दिन होता है. लेकिन आज ब्रेक फ्री में एक सवाल आपसे ये है कि अगर ये धागा बंधन है तो फिर इसमें इतनी आजादी क्यों महसूस होती है. शायद इसलिए कि कुछ बंधन हमें रोकते नहीं, हमें संभालते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ. आपकी अपनी दोस्त माला आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर जुड़ी हूँ आज कार्यक्रम ब्रेक फ्री लेकर आपके साथ. और आप क्या समझते हैं बताइए हमें. नंबर है 8657661071 यानी कि 8657661071. और तब तक एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत पहला प्यारा सा नगमा.

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम 11:12 और ठीक 33 सेकंड हो चले हैं। कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री, और ब्रेक फ्री में आपके साथ जुड़ी हुई है आपकी अपनी दोस्त माला, और आप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ आके। दीपा पालकर भी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहला मैसेज उन्हीं का दिख रहा है तो हमने उनका नाम लिया। राखी का ये बंधन गुलाम बनाने का नहीं, एक दूसरे को जकड़ के रखने का बंधन नहीं, बल्कि भाई बहन का रिश्ता मजबूत करके बहनों को सुरक्षित होने का एहसास देकर जीवन में आगे बढ़ने की और तरक्की करने की आज़ादी देता है। बहुत अच्छा आपने लिखा है दीपा जी, जो हमने पूछा आप वही बात कहना चाह रही हैं। और विजेंद्र घटोला कुला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज मोहड़ भी सुन रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल कार्यक्रम, उन्हें पसंद आ रहा है। वहीं प्रणव शिंदे ने लिखा है, कलाई पर जो बनती है वो कोई जंजीर नहीं होती, इस धागे से खूबसूरत कोई तकदीर नहीं होती, बंधते हैं दिल जहां बिना किसी पाबंदी के, उस रिश्ते में कभी कोई मजबूरी की लकीर नहीं होती। ये बंधन नहीं, ये तो रूह का आजाद साया है, एक रेशमी धागे ने दो दिलों को पास लाया है, जहां पाबंदी नहीं बस बेपनाह भरोसा है। खुदा ने ऐसा खूबसूरत रिश्ता सिर्फ भाई बहन का बनाया है, धागा भले ही छोटा हो पर इसमें गहराई भारी है, बिना किसी शर्त के निभाई जाती है दुनियादारी है, कलाई पर बांधकर बहन जो दुआ मांगती है भाई के लिए, वो बंधन नहीं जन्म जन्म की पवित्र साझेदारी है। प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे की तरफ से ये प्यारा सा मैसेज हम तक पहुंचा है, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैसेज राजेंद्र परमार

0: की तरफ से हमारे पास पहुंचा है और वो कह रहे हैं कि सभी मित्रों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अशोक पाटिल वरली कोलीवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। संजय दर्शन ने तो राखी के साथ साथ मिठाई और चावल और तिलक रोली भी हम तक पहुंचा दी है, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज हमारे पास आया है ममता जायसवाल का मुलुंड ईस्ट से, और वो शो सुन रही है, इंजॉय कर रही है, हर दिन सुनती है। आज रक्षाबंधन के लिए हैप्पी रक्षाबंधन भी उन्होंने बोला है और एक गाना वो सुनना चाहती है, वो गाना बिल्कुल हम बजाएंगे ममता जी। और प्रमोद चिंचोलकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अकोला से, शुभदा भी हमें अपनी फरमाइश का गाना भेजना चाहती हैं, भेजिए जरूर भेजिए। धनंजय नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हैप्पी रक्षाबंधन सभी कहना चाहते हैं। राकेश माथुर पुणे से और अंजू अंधेरी ईस्ट से हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी। मंगेश महात्रे और वैदेही, आप सभी का हमारे साथ इस घंटे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि अगला खूबसूरत नगमा हम आपके लिए बजाएं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री, और ब्रेक फ्री में आपके साथ आज इस पावन दिन रक्षाबंधन के दिन जुड़ी हुई है हमेशा की तरह आपकी दोस्त माला। और जब एक भाई बहन की कहानी याद करता है या भाई बहन की कहानी हम खुद याद करते हैं, बचपन में बहन उसकी कॉपी छुपा देती थी, वो बदले में उसे चॉकलेट देता था तब कॉपी मिल पाती थी, और फिर वक्त बदला, बहन दूसरे शहर चली गई, भाई अपने काम में व्यस्त हो गया। राखी के दिन दोनों फोन पर बात कर रहे थे। बहन ने कहा, इस बार राखी नहीं भेज पाई भैया। भाई हंसकर बोला, राखी की क्या जरूरत है, तू फोन कर देती ना वही काफी है। कभी कभी रिश्ते चीजों से नहीं याद किए जाने से जिंदा रहते हैं। और आपकी आखिरी राखी की सबसे प्यारी याद क्या है हमारे साथ शेयर कीजिए। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर कार्यक्रम ब्रेक फ्री में आपकी दोस्त माला जुड़ी हुई है आपके साथ। नंबर आपको बता देती हूँ, 8657661071 8657661071। तो याद अपनी राखी की शेयर कीजिए हमारे साथ कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। और ये गाना सभी प्यारे भाइयों के लिए और बहनों के लिए।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, ये जो बंधन है, जो रिश्ते हैं, वो दूर कहीं तय हो जाते हैं और राखी को हम अक्सर भाई बहन की रक्षा करेगा के वादे से जोड़ देते हैं, लेकिन जरा सोचिए कितनी बहनें हैं जिन्होंने भाई का हौसला बढ़ाया और कितने भाई हैं जिन्होंने बहन के सपने को उड़ान दी, और कितने रिश्ते ऐसे हैं जहां दोनों एक दूसरे की ढाल हैं। तो शायद रक्षा का मतलब सिर्फ बचाना नहीं, एक दूसरे को अपने फैसले लेने की हिम्मत देना भी है। यही तो हमारा ब्रेक फ्री वाला ट्विस्ट है। रिश्ता वो नहीं जो आपको बांध कर रखे, रिश्ता वो है जो आपको उड़ने की जगह दे दे। मुंबई जैसे शहर में कितने रिश्ते दूरियों के बावजूद साथ साथ चलते हैं। कोई बहन विदेश में है, कोई भाई किसी दूसरे शहर में, किसी की राखी डाक से पहुंच जाती है, किसी की वीडियो कॉल पर, लेकिन धागा चाहे कलाई तक पहुंचे या नहीं, रिश्ता अपनी जगह पहुंच ही जाता है। और शायद इसी वजह से राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक याद दिलाने की वाली तारीख है कि रिश्तों को भी रिचार्ज की जरूरत होती है। तो आज किसी ऐसे भाई या बहन को फोन करिए जिससे बात किए हुए बहुत वक्त हो गया हो। सवाल बस इतना है, हम रिश्तों को याद करने के लिए त्योहार का इंतजार क्यों करते हैं, उन्हें निभा क्यों नहीं लेते, उनके बारे में सोच क्यों नहीं लेते। तो भाई हमें तो बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। आज ये मैसेज हमारे पास स्मिता नेवे का आया है, वो रक्षाबंधन कह रही है और एक धागे से बंधा हुआ भाई बहन का प्यार, ये गाना आप हमारे लिए प्ले कर दो। हम कोशिश करेंगे स्मिता कि हम ये गाना आपके लिए प्ले करें, शायद हम प्ले भी करेंगे। अजय साखरे इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं किरण जी को भी पहुंचाई हैं। और विजेंद्र घटोल अकोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए पिक्चर उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। और काजल कक्कड़ चेंबूर से, कितना भी रूठे रूठ कर माने पर प्यार ना होता इसमें कम, बिन बोले समझ जाती बहना, भाई का गम दुनिया से लड़ जाएगी पर ना होने देगी आंखें नम। तो भाई राखी जो है उन्होंने बांध ली है और वो ये मैसेज भेज रही हैं। हम अपने घर में कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाएं, भाई के खर्चे जो करता है वो हम पर, वो खुशी एक अलग ही होती है। बड़ी उम्मीद होती है कि भाई

हमें आज के दिन हमें देंगे क्या आखिर। शुभदा का ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है। मेरा भाई जो है मुझसे 5 साल से रूठा है, तो रक्षाबंधन और भाई दूज वो दिन बहुत याद करके रोना पड़ा। बचपन में एक भाई को खोया, वो हमेशा याद आता है। चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे, कभी नहीं भूल सकती। शुभदा का ये बड़ा इमोशनल सा प्यारा सा मैसेज हम तक पहुंचा है। शुभदा इस बार एक छोटी सी कॉल करिए और अपने भाई से बात करिए। प्रणव शिंदे भी जुड़ गए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून का, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, और गणेश पाटिल वाड़वन से हमारे साथ एक प्यारी सी राखी इन्होंने हम तक पहुंचा दी है। और फिरोज सिगिनपुरिया भी सुन रहे हैं, कार्यक्रम इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी रक्षाबंधन बोल रहे हैं। दीपा पालकर बाबा दादर से, विठल मुंगे से हमारे साथ जुड़ गए, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। राम प्रजापति वसई की तरफ से, वसई से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है, ये भी दे रहे हैं। और ये मैसेज है अस्मिता, आदित्य, शीतल, गणेश, भुजबल, नेरुल, नवी मुंबई से सुन रहे हैं हमें। राजेंद्र परमार तो जुड़े ही हुए हैं, प्रमोद चिंचोलकर, संजय दर्शन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे मैसेज हैं, किस किस को शामिल करें। हितेश वाघेला भी कुछ लिख रहे हैं, अशोक पाटिल वर्ली से, विजेंद्र घटोल अकोला से, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार आपने हम तक पहुंचाया इस खूबसूरत से दिन। इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि ये बंधन तो प्यार का बंधन है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम कार्यक्रम ब्रेक फ्री 11:46 और ठीक 29 सेकेंड हो चले हैं और ब्रेक फ्री कार्यक्रम में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन का पावन त्यौहार। राखी की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि इस एक धागे में हमारा पूरा बचपन बंधा होता है। वो एक ही घर में बड़े होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, एक दूसरे की शिकायत करना और फिर 5 मिनट बाद साथ बैठकर खाना खा लेना। बड़े होकर शहर बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, रास्ते भी बदल जाते हैं, लेकिन भाई बहन के बीच का वो बचपन कहीं नहीं जाता। राखी पर बस एक सवाल अपने भाई या बहन से पूछिए, याद है बचपन में हम किस बात पर सबसे ज्यादा लड़ते थे? देखिएगा, शायद जवाब के साथ एक पुरानी मुस्कुराहट भी लौट आए, क्योंकि कुछ रिश्तों को निभाने के लिए बड़े वादे नहीं चाहिए होते, बस एक पुरानी सी याद काफी होती है। तो भाई इसी बात पर एक प्यारा सा नगमा आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर आपके लिए।

तो भाई कुछ बंधन ब्रेक फ्री कराते हैं, तो आज राखी बांधते हुए सिर्फ ये मत कहिए कि मेरी रक्षा करना, कभी ये भी कहिए कि जब मैं डरूं मेरा हौसला बनना, जब मैं गिरूं मुझे उठाना, और जब मैं अपने सपनों की तरफ जाऊं तो मुझे रोकना मत, क्योंकि हर बंधन कैद नहीं होता। कुछ बंधन हमें हमारी जड़ों से जोड़ देते हैं ताकि हम और दूर तक उड़ सकें। आज के ब्रेक फ्री का आखिरी सवाल, आपकी कलाई पर बंधी राखी आपको किस चीज से आजाद करती है? अकेलेपन से, डर से, या इस एहसास से कि आप अकेले हैं? मैं हूं आपकी अपनी दोस्त माला, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री, और फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इस घंटे से इजाजत लेने का, लेकिन अगले घंटे में भी जुड़ी रहूंगी आपके साथ। शुभलक्ष्मी मस्तकार बहरहाल जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, राजेंद्र परमार, प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, विजेंद्र घटोल, काजल कक्कड़ जुड़े ही हुए हैं, आकांक्षा, मनोज सिन्हा, हितेश वाघेला, राम प्रजापति, और ये एक गाने की फरमाइश आपने की जरूर है हितेश जी, लेकिन हम 1 बजे के कार्यक्रम में आपकी पसंद के गाने जरूर बजाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस घंटे में जुड़े रहने के लिए। श्री राउत, मिलेश गजानन राउत, आर्य मिलेश राउत टिगरे पाड़ा से जुड़े हुए हैं, संजय दर्शन भी हमें सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस घंटे में जुड़े रहने के लिए। और आपको फिलहाल छोड़ जा रही हूँ इस रंग बिरंगी राखी के साथ, और बने रहिए FM रेनबो पर, म्यूजिक कैफे में भी मचाएंगे मिलकर धमाल छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद।

एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर वक्त हो चला है 12:08। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें महिलाओं के 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के आज ही के दिन किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये 2024 से सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल में आई बाढ़ की वजह से तिब्बत में फंसे महाराष्ट्र के 37 श्रद्धालु काठमांडू के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन यात्रियों के लौटने के लिए व्यवस्था करने में मदद की है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अमेरिका के सेंट लुई में ग्रैंड फाइनल में अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराया। प्रज्ञानंद ने कल शुरुआत में कारुआना से 6 अंक से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की थी। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

तो भाई आज है रक्षाबंधन और आज हम उस धागे की बात करेंगे जो कलाई पर बनता जरूर है मगर यादों में बहुत दूर तक चला जाता है। कभी इसी धागे के साथ बचपन की लड़ाई होती थी, कभी मिठाई के लिए मोल भाव और कभी छुप कर दिया गया कोई छोटा सा तोहफा। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त माला। आज म्यूजिक कैफे में राखी के बहाने हम उन्हीं शरारती, प्यारे और कभी ना भूलने वाले पलों की प्लेलिस्ट खोलेंगे। तो शुरुआत तो हमने कर दी है इस खूबसूरत से गाने के जिसे हमने लिया है रक्षाबंधन फिल्म से।

तो भाई भाई बहन हो या बहन बहन हो, प्यार जो है वो एक ही बराबर का होता है। तो आज हम आकाशवाणी मुंबई पर सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार। कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक कैफे, और बचपन की नोक झोंक की अगर बात करें तो भाई बहन का रिश्ता जो है वो बहुत कमाल का होता है। एक घर में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राजदार होते हैं, सबसे बड़े शिकायतकर्ता भी होते हैं, और आपस में जब दोनों मिल बैठ कर बातें करते हैं तो बहुत सारी खिचड़ियाँ भी पकाई ही जाती हैं। और रिमोट से लेकर लड़ाई हो या आखिरी मिठाई किसकी होगी, बचपन की ये छोटी छोटी लड़ाइयां बाद में प्यारी यादें बन जाती हैं। रक्षाबंधन आते ही लगने लगता है जैसे कि उन पुरानी आवाजों का एल्बम जो है वो फिर से चल पड़ा है। एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे के राज छिपाना और एक दूसरे की शिकायत करना जो है वो वापस याद आने लगता है। और आज म्यूजिक कैफे में हम उसी एल्बम के कुछ पन्ने संगीत के साथ पलट रहे हैं। तो अगली धुनों में थोड़ा सा और बचपन और भाई बहन की नोक झोंक को शामिल करते हैं।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

तो भाई राखी में थोड़ा फन भी और भावुकता को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में जितना प्यार होता है बार्गेनिंग भी उतनी ही होती है।

है, बहन की राखी तैयार और भाई की जेब पर खतरे की घंटी, क्योंकि सवाल सिर्फ राखी का नहीं, गिफ्ट कितना है उसका भी होता है। और भाई भी कम नहीं, राखी बंधवाते हुए चेहरा ऐसा बनाता है, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। लेकिन सच तो ये है कि इस नोकझोंक के बिना रक्षाबंधन की तस्वीर कुछ अधूरी सी ही लगती है। तो भाई म्यूजिक कैफे में हम आपके लिए बजा रहे हैं रक्षाबंधन की धुनें लगातार, और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं आपके प्यारे मैसेजेस जो हम तक पहुंचे हैं। दीपा पालकर माहिम से उन्हें गाने पसंद आ रहे हैं, विजेंद्र घटोला कोला से, पंकज महोड़ अशोक पाटिल वर्ली से, काजल कक्कड़ चेंबूर से, और धनंजय नवी मुंबई से राकेश माथुर को कार्यक्रम और बातें जो हैं वो पसंद आ रही हैं। और ये मैसेज प्रकाश शिंदे का हमारी तरफ से है, भाई बहन का अटूट प्रेम सुरक्षा के संकल्प और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है रक्षाबंधन। संस्कृत में रक्षा का अर्थ सुरक्षा और बंधन का अर्थ धागा या गांठ होता है। ये केवल एक धागा या सूत का धागा नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक गहरा विधाता है जो परिवारों को आपस में जोड़े रखता है। वहीं प्रमोद चिंचोलकर भी जुड़ गए हैं, राखी की प्यारी सी तस्वीर उन्होंने हम तक पहुंचाई है। राजेंद्र परमार, शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी सुन रही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए, और ये एक और नोकझोंक भरा प्यारा सा गाना।

तो दोस्तों, आज म्यूजिक कैफे में हमने राखी को सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं बल्कि यादों के खूबसूरत संगीत की तरह सुना। कलाई पर बंधा धागा कुछ दिनों में पुराना हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो यादें होती हैं वो सालों तक नहीं रहती हैं। कई कभी कभी भाई बहन की आवाज में बचपन सुनाई देता है, कभी उनकी हंसी में पूरा घर लौट आता है। आज अगर आपका भाई या बहन आपसे दूर है, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो एक फ़ोन कर लीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ रिश्तों को किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त माला, और म्यूज़िक कैफे की ओर से आप सभी को ढेरों प्यार। और रिश्तों का ये संगीत यूं ही हम आपके लिए बजाते रहे आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12:30 पर आप सुनेंगे हमारा रोज आने वाला कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT, और 1 आप सुनेंगे मराठी में समाचार, और 1:05 पर होगा आपका अपना फेवरेट पसंदीदा कार्यक्रम हिट एंड हॉट। तब हम लेंगे आपकी पसंद के गाने, आपकी कहानियां। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि रिश्तों का जो ये धागा है हमने आकाशवाणी के माध्यम से आपसे बांधा है। माला के साथ बने रहिएगा 1:05 पर।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और CIT NCERT को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
0: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
0: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
0: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
0: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
2: जी,
0: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
2: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
0: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
2: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
0: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
2: जी,
0: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
2: जी,
0: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
2: जी,
0: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
2: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं

0: सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
1: जी,
0: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
1: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें?
0: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
1: जी,
0: वैसे विमलेश जी क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
1: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
1: लेकिन अजी जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
0: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता।
1: जी,
0: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
1: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
0: जी,
1: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
1: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
0: क्या सीख विमलेश जी?
1: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
0: जी,
1: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं। कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
0: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर, या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
0: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
4: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
5: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
4: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
5: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
4: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
4: जी पिताजी।
3: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
4: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
6: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
4: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना

0: में काम करें।
1: भला वो क्या?
2: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
0: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
3: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
4: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
5: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेंद्र?
6: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
3: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
4: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
6: हाँ,
5: आपका ऊंट खो गया है ना?
6: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
7: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
4: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
7: है?
4: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
7: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
6: नहीं नहीं,
7: अरे, बताओ,
6: नहीं।
7: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
6: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
7: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
6: नहीं।
7: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
6: वो
7: महाशय, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
6: लेकिन
7: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
6: क्या?
7: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
3: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
7: मुझे कुछ नहीं सुनना।
6: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
7: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, आप चलो हमारे आगे आगे चलो चलो चलो।
3: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
7: अब तुम सब राजा के पास चलो।
6: महाशय,
7: चलो, तो काट के रख दूंगा। चलो।
8: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
4: राजन, हम चोर नहीं हैं। हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
9: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
8: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
9: तुम लोगों को कुछ कहना है?
6: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
9: अच्छा, तो ये बात है।
6: जी,
9: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
10: जी महाराज।
3: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
9: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
4: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
6: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
3: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा

0: आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
1: खाइए खाइए, लीजिए।
2: जी महाराज, जी महाराज, धन्यवाद।
0: फिर पूछा,
3: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
4: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
5: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
6: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
3: वाह, बहुत खूब।
0: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
3: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
5: महाराज, वहां पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
3: क्या बात है?
4: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
3: अच्छा,
4: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
3: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
6: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
3: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
2: धन्यवाद महाराज।
4: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
3: मैं सचमुच चकित हूँ।
2: जी महाराज।
0: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।
8: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
9: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
8: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्य निष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
9: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
8: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हां, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी।

0: जी ने। एक दिन की बात है,
1: सरला सरला बेटी, सरला बेटी।
2: अरे बाबूजी, आप
3: कहां खोई हो बेटी?
2: आप
3: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
2: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूं?
2: जी
3: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
2: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
3: तो फिर देर किस बात की? लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
2: अच्छा,
3: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
2: पर
3: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
2: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
3: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
2: हाँ, जी, सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
2: सर, मैं बताऊँ?
4: हाँ हाँ सरला, तुम बताओ।
2: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
2: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
8: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
9: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
2: I'm so excited.
9: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: लैंडिंग
1: कमाल।
2: थैंक यू,
3: बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
3: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए, अमेजिंग।
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
5: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
4: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
6: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
4: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
7: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे मराठी में समाचार।
11: सुरुवातीला ऐकूया आमच्या केंद्रावरचं बातमीपत्र।
12: नमस्कार, आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राच्या दुपारच्या बातमीपत्रात मी योगिता शेटे आपलं स्वागत करते। विकसित भारत अभियानाअंतर्गत येत्या 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचं महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट भारतानं ठरवलं आहे। सध्या देशात 7 विविध ठिकाणी 24 अणुऊर्जा प्रकल्प चालवले जात असून त्यांची एकूण स्थापित क्षमता 8.78 गिगावॅट इतकी आहे। देशात आणखी 9 अणुभट्ट्यांच्या उभारणीचं काम वेगानं सुरू असल्याचं अणुऊर्जा विभागानं म्हटलं आहे। अणुऊर्जा केवळ वीज निर्मितीमध्येच नव्हे तर आरोग्यसेवा, कृषी आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रातही योगदान देत आहे। सुरक्षा सर्वोपरी या तत्वावर भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम आधारित आहे। संरक्षण आपत्कालीन परिस्थितीसाठीची सर्वसमावेशक तयारीद्वारे हा कार्यक्रम विश्वसनीय आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणार आहे। तसंच वीज पुरवण्यासोबतच लोक आणि पर्यावरणाचंही रक्षण करतो असं अणु विभागानं म्हटलं आहे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। कार्यक्रम हिट एंड हॉट लेकर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त माला, और आप भी हाजिर हैं अपने मैसेजेस के साथ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी इतने प्यार के साथ। आप हमें याद करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी पसंद के गाने ज़रूर बजाए जाएँ और आपकी बातें भी शामिल की जाएँ। तो हिट एंड हॉट में इससे पहले कि हम आपके मैसेजेस शामिल करें, ये प्यारा सा जो नाता है इसके लिए भी एक गाना बनता है।

तो भाई आज की जो पहली कहानी हम तक पहुंची है उसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये कहानी हमें पहुंचाई है प्रकाश शिंदे की तरफ से। ये कहानी हमारे पास पहुंची है और ये कहानी है मराठी लोक संगीत और लावणी को सिनेमा के शिखर तक पहुंचाने वाले महान संगीतकार राम कदम जी की। 28 अगस्त 1918 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में मिरज गांव में इनका जन्म हुआ और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है और रक्षाबंधन भी है। राम कदम जी का जन्म बचपन में भारी कश्मकश और गरीबी में बीता। शुरुआत में वो मिरज यानी सांगली में एक लोकल बैंड में शहनाई बजाया करते थे। संगीत की समझ उनकी गजब की थी, इसलिए वे पुणे के मशहूर प्रभात फिल्म स्टूडियोज में काम की तलाश में पहुंच गए। वहां उन्हें संगीतकार के रूप में नहीं बल्कि एक ऑफिस बॉय के रूप में काम मिल गया, जो झाड़ू लगाने, पानी भरने

और दिग्गजों के लिए चाय लाने का काम करते थे। स्टूडियो में काम करते करते राम कदम जी का ध्यान हमेशा संगीत पर रहता। जब बड़े बड़े संगीतकार जैसे सुधीर फड़के, केशव राव भोले और मास्टर कृष्ण राव गानों की धुनें बनाते तो राम कदम बाहर पोछा लगाते हुए चाय देते हुए उनकी धुनों को बेहद ध्यान से सुनते। और एक दिन स्टूडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म के गाने की सिचुएशन पर चर्चा चल रही थी और उस समय के दिग्गज संगीतकार एक बेहतरीन धुन बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन काफी समय बाद भी मन पसंद की धुन नहीं बन पा रही थी और कमरे में तनाव का माहौल था। और राम कदम साहब हाथ में चाय की केतली लेकर अंदर आए। उन्होंने वहां के माहौल को देखा, बिना डरे या हिचकिचाए उन्होंने बहुत ही विनम्रता से अपनी जेब से एक छोटी सी बांसुरी निकाली और कहा, मालिक अगर आप आज्ञा दें तो इस सिचुएशन के लिए मेरे दिमाग में एक छोटी सी धुन है, सुनाओ। वहां बैठे लोग चौंक गए और एक चाय पहुंचाने वाला लड़का संगीत की बात कर रहा है। उन्हें मौका दिया गया, जब उन्होंने धुन बजानी शुरू की तो कमरे में सन्नाटा छा गया। वो धुन इतनी अनूठी थी, सीधे दिल को छूने वाली मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरी थी कि वहां बैठे फिल्म निर्देशक और मुख्य संगीतकार दंग रह गए। दिग्गज निर्देशक वी शांताराम, जिनके बैनर तले बाद में राम कदम जी ने ऐतिहासिक फिल्म पिंजरा में संगीत दिया था, उठकर उस ऑफिस बॉय को गले लगाया और इसके बाद राम कदम को सुधीर फड़के का असिस्टेंट बना दिया गया और जल्द ही उन्होंने एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में 200 फिल्मों में संगीत देकर इतिहास रच दिया। और इस कहानी से ये सीख मिलती है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी लगन बड़ी होनी चाहिए। राम कदम जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सिर्फ एक ऑफिस बॉय हैं। उन्होंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया लेकिन अपने भीतर के संगीतकार को हमेशा जिंदा रखा। जब भी आपको अपने क्षेत्र के दिग्गजों के आसपास रहने का मौका मिले तो चुपचाप उनकी कार्यशैली को देखें और सीखिए। राम कदम जी ने चाय पिलाते पिलाते संगीत के सबसे बड़े गुर सीख लिए। जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आपके पास हुनर तैयार होना चाहिए। अगर राम कदम जी रोज रियाज न करते तो उस दिन वो जादुई धुन कभी नहीं सुना पाते। दिग्गजों के सामने अपनी कला को बिना किसी डर के प्रस्तुत करने का साहस ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छी सी कहानी हमारे पास भेजी है प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे ने और उन्हीं की फरमाइश का ये गाना हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर, कार्यक्रम हिडन हॉट।

विजेंद्र घडोल ने अकोला से फरिश्ते फिल्म के इस गाने की फरमाइश, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने इस गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और वहीं गुरमीत सिंह, मीता सिंह भी जो है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र घडोल अकोला से, इनकी फरमाइश हम प्ले करें। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला श्री गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर उससे किनपुरिया, स्मिता महात्रे और प्रकाश शिंदे की भी ये गाने की फरमाइश हम तक पहुंची है। तो एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत नगमा हमारा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, और 1:30 पर आप सुनेंगे मराठी में समाचार, और उसके बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएगी आपकी दोस्त माला लेकर कार्यक्रम हिट एंड हॉट। उससे पहले कि हम अगला गाना आपको बजाएं आपके लिए, और ये जो मैसेज हमारे पास आया है मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा का, ये वडिंग खेड़ा से इन्होंने हमें मैसेज किया है, और आरज ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार का मुजफ्फरनगर बिहार से राखी फिल्म का गाना ये बजवाना चाहते हैं, तो हमने वो गाना ऑलरेडी सुबह के प्रोग्राम में आपके लिए प्ले कर दिया है। आकांक्षा मनोज सिन्हा का ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है रक्षाबंधन के ऊपर, तो भाई आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए बने रहिए इसी तरह। लेकिन अगला जो गाना है वो हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म से।

तो भाई भाई भाई जब शादी के लिए जाता है, घोड़ी चढ़ता है, तो बहनों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के मैसेजेस शामिल कर पाएं इस घंटे में, क्योंकि बहुत सारे गाने जो आपने हम तक पहुंचाए हैं वो हम ऑलरेडी आपके लिए प्ले कर चुके हैं। विजेंद्र खटोल अकोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई सभी की फरमाइश जो सबने भेजी है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैसेज पंकज महोड़ का हमारे पास पहुंचा है, आपका नाम बिल्कुल हम शामिल करेंगे, गाना हम ऑलरेडी आपका बजा चुके हैं। वहीं सुनील पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से हमें सुन रहे हैं। कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावैया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपा पालकर भी सुन रही हैं, उनका गाना हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं क्या कहना फिल्म से। ये मैसेज फिरोज सिंह गिनपुरिया की तरफ से आया है, आपका गाना हम ज़रूर प्ले करेंगे। अभिजीत गावणकर के साथ साथ सरिता गावणकर, सिद्धांत गावणकर, एकांश गावणकर और लाडला टुक टुक भी शामिल है और ये हमें सुन रहे हैं मेहर नगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से। और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है हैप्पी रक्षाबंधन का, जालंधर सिटी बलदेव नगर जालंधर सिटी पंजाब से सोनू रविराज गुलशन लक्की, और गाना तो हम आपके लिए प्ले कर ही देंगे। हीरामणि वर्मा के साथ साथ जुड़े हुए हैं पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और ये हमारे साथ जुड़े हैं भाटापारा दत्त रेंगी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। ये मैसेज सोहन लाल यादव का है, जगह का नाम इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है। राकेश माथुर हमें सुन ही रहे हैं, राकेश जी कोशिश करेंगे कि आपका गाना भी हम बजा दें। गुरमीत सिंह, मीता सिंह का नाम साथ में है। मेहर अरोड़ा श्रीगंगानगर से, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमि अरोड़ा और स्मिता महात्रे भी सुन रही हैं, साथ ही साथ प्रमोद चिंचोलकर बाबा दादर से, आकांक्षा मनोज सिन्हा, अशोक पाटिल वर्ली से। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो का, साथ में है रोजी डिकेस्ट्रो, पल विलीज डिकेस्ट्रो और ये भी हैप्पी रक्षाबंधन कह रहे हैं और अपना नाम सुनना चाहते हैं। हितेंद्र दास भी असम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप कुमार ने जालंधर से हमें ज्वाइन किया हुआ है, इनके साथ साथ संदीप मक्कड़ के साथ ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय साखरे इंदौर से हमें सुन रहे हैं, अदालत फिल्म का ये गीत हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं अजय जी। दिग्दर्शन कविता मेरठ से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं लिख रहे हैं, प्रकाश शिंदे तो सुन ही रहे हैं, सुजाता आंगरे डोंबिवली से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं इन्होंने पहुँचाई हैं, संजय दर्शन वो कह रहे हैं जब रिश्तों की माला एक बार टूट जाती है तो उसे पहले से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, धागा टूटने के बाद अगर उसे जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, रिश्तों में ये गांठ भरोसे की कमी, पुरानी कड़वाहट या मन मुटाव के रूप में दिखाई देती है, ये सिर्फ त्योहारों के रूप में याद आती है। और वैदेही भी सुन रही हैं गणेश पाटिल वाडवन से, धनंजय मुंबई से, राजेंद्र परमार, शुभलक्ष्मी मस्तकार, शुभदा आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी पसंद के सभी गाने शामिल कर पाए और अगर ना भी कर पाए तो आपके नाम हमने शामिल कर लिए हैं।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम और सभी लिसनर्स चाहते हैं कि उनके नाम जो है वो जरूर शामिल किए जाएं। तो ये जो मैसेज मेरे पास पहुंचा है ये है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं इन्होंने पेश की हैं। और जो गाना आप बता रहे हैं वो गाना हम बजा चुके हैं दोस्त। और विजेंद्र घटोल ने हमसे कहा है कि भाई आपका अगला प्रोग्राम कब होगा, तो वो मुझे भी नहीं पता है तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगी। लेकिन आप सुनते रहिए एफएम रेनबो, क्योंकि बहुत सारे और प्यारे प्यारे आरजेज आपके साथ जुड़ेंगे आने वाले समय में। काजल कक्कड़ चेंबूर से वो हमें 11 बजे से सुन रही हैं और कहना चाहती हैं कि भाई आप मेरा नाम भी शामिल कर लो किसी गाने में। तो गाने तो हम सभी आप सबके लिए बजा रहे हैं, लेकिन आपका नाम मैंने शामिल कर लिया है। पंकज मोहड़, वहीं रघुनाथ कोल्हा खनुकर कोल्हापुर से हमें सुन रहे हैं, महाराष्ट्र कोल्हापुर से। और कार्यक्रम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर

0: अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
1: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5,00,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10,00,000 अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में आए भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: अपनी दो दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज़्बेक मूर्तिकार याकोब शापिरो ने

0: डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्योहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का

ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Agagap?
1: Agumai, bai, bai, bai, bai.
0: नाकात वाकड़ा नथी चाकड़ा वही वही वही नाकात

धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार और स्वागत आप सभी का आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर जो है म्यूजिकली योर्स। और आज की इस शाम मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता, लेकर अपना वही सुनहरा पितारा जिसमें होती है बहुत सारी बातें और होते हैं बहुत सारे गीत। और आज 28 अगस्त 2026 की इस शाम सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारी बहनों ने, भाइयों ने रक्षाबंधन पर्व मना भी लिया होगा और कुछ बहनें अभी भी शायद भाई का इंतज़ार कर रही होंगी, और ये भी हो सकता है कि कुछ भाई अपनी बहनों का इंतज़ार कर रहे होंगे। खैर, आपका ये इंतज़ार जल्द ही ख़त्म हो और आप भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें और साथ ही साथ उनसे अपने मन मुताबिक, जैसे हर साल आप क्या करती हैं भाई, एकदम कहते हैं ना ठाट से अपने मन मुताबिक जो गिफ्ट लिया करती हैं वो भी आप जल्द ही ले लेंगी। और फिलहाल हम यहाँ शुरू करते हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी, जहाँ हम बात करते हैं जिंदगी की, उसकी खुशियों की और उसके रंगों की। और दोस्तों हमारे पर्व त्यौहार जब आते हैं तो अपने साथ खुशियाँ भी लाते हैं और हमारे जीवन में खुशियों का रंग भी भर देते हैं। कहते हैं जिंदगी में रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ रिश्ते हमें जीना सिखाते हैं। और भाई बहन का रिश्ता शायद इन दोनों ही बातों का सबसे खूबसूरत मेल है। जरा सोचिए कभी आपने। और आज सुबह जब मैं आरजे किरणमाला का भी कार्यक्रम सुन रही थी और उसके बाद आरजे

मालक की भी बातें मैंने बहुत गौर से सुनी और उनकी बातें सुनकर के मुझे सच कहूँ ना तो एक बात रियलाइज हुई और आपने भी शायद इस बात को रियलाइज किया होगा कि हमारी जिंदगी का वो पहला दोस्त कौन होता है, वो दोस्त जिसके साथ हमें दोस्ती करने के लिए ना कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए होता है और ना ही कोई कॉमन इंटरेस्ट, कोई कॉमन फ्रेंड भी हमें नहीं चाहिए होता है। वो तो बस हमारे घर में पैदा हो जाता है या तो फिर हम उसके घर में पैदा हो जाते हैं। भाई बहन शायद दुनिया के सबसे अजीब दोस्त हो सकते हैं। आप उनसे लड़ भी सकते हैं, आप उनसे नाराज भी हो सकते हैं, उनकी सीक्रेट्स भी जानते हैं, उनकी सारी कमियां भी जानते हैं, लेकिन जब कोई बाहर वाला कोई मजाल की कुछ कह दे, यहाँ तक कि घर वालों ने भी अगर कुछ कहा तो सबसे पहले कौन खड़ा हो जाता है? वही भाई, वही बहन। और बस इस खूबसूरत रिश्ते के नाम करती हूँ मैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते में ना एक ऐसा अनकहा सा भरोसा होता है जो कहता है और समझ भी जाते हैं हम कि भाई हम चाहे उनसे कितनी भी लड़ाइयाँ कर ले या वो हमसे कितनी भी लड़ाइयाँ कर ले, लेकिन अगर दुनिया उनसे लड़ने आ जाए या दुनिया वाले उनके बारे में कुछ भी कह दे तो उन्हें, कहते हैं ना, सबसे पहले भाई उन्हें उनसे गुजरना होगा। मतलब अगर बहन को किसी ने कह दिया तो भाई खड़ा हो जाता है ढाल बनकर, और अगर भाई को किसी ने कहा तो मजाल कि भाई को कोई बोल करके भी दिखाए, बहन सबसे पहले खड़ी होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर पहले हम अक्सर कहते थे भाई मेरी रक्षा करना, लेकिन क्या सचमुच ये रिश्ता सिर्फ रक्षा का है? आज के समय में शायद इस बात का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि बहन भी भाई की रक्षा करती है, उसकी भावनाओं की रक्षा करती है, उसके सीक्रेट्स को, उसके सपनों की रक्षा करती है। और भाई भी अब वो उस लिटरल सेंस में बहन की रक्षा नहीं करता, कई बार भाई अपनी बहन की हिम्मत बनता है, उसका सबसे ईमानदार क्रिटिक बनता है, और सबसे मुश्किल समय में उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त बन जाता है। यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। राखी की डोर कलाई पर बनती है, लेकिन असल में हमारे दिलों को प्रेम के रिश्ते में बांध देती है। और आज उन सभी घरों में जहां पर शायद सिर्फ बहने बहने होंगे या सिर्फ भाई भाई होंगे, तो आपको भी दिल उदास करने की जरूरत नहीं है। आज हम यहाँ FM रेनबो पर साथ में बनाएंगे रक्षाबंधन का पर्व, क्योंकि भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन हो कि राखी बांधने जाती है बहनें भाई के घर पर, लेकिन जो बॉन्डिंग होती है वो तो दिल से होती है, वो बहनों में भी हो सकती है और वो भाई भाई के बीच भी हो सकती है।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
0: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
2: कोई लुभाए शेरो शायरी से
0: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
3: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
4: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

शान, श्रेया घोषाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में एक विवाह ऐसा भी, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। और इस गीत से पहले जो गीत आप सुन रहे थे वो था माय ब्रदर निखिल इस फिल्म से। आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो भी हम तक पहुंच रहे हैं। विजेंद्र घटोल का मैसेज आया है अकोला से और उन्होंने भी बाकायदा फोटोग्राफ शेयर की है हमारे साथ पर्व मनाते हुए। उनकी बहन उन्हें राखी बांध रही है और उन्होंने सभी सुनने वालों को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं प्रकाश शिंदे भी, उन्होंने भी फोटो भेजा है अपनी बहनों के साथ और आज बहुत ही ख़ास दिन रहा उनके लिए भी। साथ ही साथ पंकज महोड लिखते हैं कि भाई मेरे परिवार में इस बार मैं राखी का त्यौहार नहीं मना पा रहा हूं क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही दुखद की बात है। और पंकज जी, हम सभी की ओर से आपके बड़े भाई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और राकेश माथुर का भी मैसेज आ गया है, लिखते हैं नमस्कार। और अंजू जी ने मैसेज किया है अंधेरी ईस्ट से और केयर रही हैं हमारा, वेलकम भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम भी यहाँ एक अलग ट्विस्ट के साथ, एक अलग कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। भाई बहन एक रिश्ता है ही, लेकिन यही रिश्ता शायद हमारे जीवन में दोस्ती की बुनियाद बन जाता है। और सच तो ये भी है दोस्तों कि समय के साथ ये रिश्ता भी थोड़ा बदल जाता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने एक विवाह ऐसा भी ये मूवी देखी होगी, अगर ये फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से चांदनी जो है वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेम से विवाह ना करने का डिसीजन लेती है और अपने परिवार, अपने भाई बहनों के लिए वो ये सैक्रिफाइस करती है। बड़ा भाई कब पापा के जैसा जिम्मेदारी उठाने वाला बन जाता है पता ही नहीं चलता। और कब बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए माँ स्वरूप हो जाती है, शायद उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता। ये बड़े भाई और बड़ी बहन सच में अलग ही लोग होते हैं। और जो छोटे उस्ताद होते हैं, जो छोटे भाई बहन होते हैं, भाई उनकी तो मैं क्या ही मिसाल दूँ। सबसे छोटी बहन यानी कि घर में सबकी दादी माँ होती है, सभी से अपनी जिद कैसे पूरी करवानी है ये उन्हें अच्छे

पूरी तरह से आता है, और छोटा भाई भाई वो तो सबकी आंखों का तारा होता है। यूं तो बड़े भाई बहन से छोटे कितना ही झगड़ा कर ले, लेकिन जब बड़े भाई या बड़ी बहन घर से दूर जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आंखों में आंसू इन्हीं छोटे भाई बहनों के आंखों में होते हैं। और कितनी भी शिकायतें कर लें, कितनी भी लड़ाई झगड़े कर लें, लेकिन एक दूसरे से जब दूर बिछड़ना होता है ना, तब असल में समझ में आता है कि ये रिश्ता असल में कितना ज़रूरी है उनके लिए।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिले।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

5:37 का वक्त, यानी कि 5:37, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और कार्यक्रम चल रहा है लव यू जिंदगी। और आज यहाँ हम लव यू जिंदगी कार्यक्रम में मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। दोस्तों, हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर अपने अपने परिवार को संभालना, कई बार अलग अलग शहर और अलग अलग देश में भी बस जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो रोज़ की लड़ाइयाँ थी वो कहीं कम होने लगती हैं और एक वक्त के बाद गुम सी हो जाती हैं। वो हर बात बात पर शिकायत करना कि अरे मम्मी इसने मेरा सामान ले लिया है, इसे कहा करो मेरे सामान को, मेरी चीज़ों को हाथ न लगाया करे, और वो जो रिमोट को लेकर के जो लड़ाइयाँ होती है उफ, और उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पीछे छूट जाती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं छूटती, एक दूसरे के लिए वो जगह जो बचपन में बन गई थी। इसीलिए तो आज के दिन अगर आपके भाई या आपकी बहन आपसे दूर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आज कोई पुरानी तस्वीर निकालिए, उन्हें कॉल लगाइए, बचपन की कोई कहानी, कोई किस्सा याद करिए, और वो पुरानी लड़ाइयाँ याद कीजिए, और फिर से हंसिए मुस्कुराइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है। और आज यहाँ लव यू ज़िंदगी कार्यक्रम में मैं कुछ ऐसे गीत लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी फिल्मों के जिसमें भाई बहन का रिश्ता जो था ना वो बहुत अलग ढंग से भी दिखाया गया था, और साथ ही साथ एक अलग कह सकते हैं कि एक अलग बॉन्डिंग हमें उस सुनहरे पर्दे पर देखने को मिली थी। और ये अगला गीत जोश फिल्म का, जहाँ पर मैक्स और शर्ली भाई बहन, पर मैक्स जब भी कंफ्यूज होता है तो वो हमेशा शर्ली के पास जाकर के ही एडवाइस लेता है।

0: ये सेटिंग हुई क्या?
1: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है यार।

दोस्तों शायद भाई बहन का रिश्ता हमें दोस्ती का सबसे बड़ा सबक यही सिखाता है कि सच्चा दोस्त वो नहीं जो हर बात आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपकी हर बात में आपको बस भाई तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। असल में तो वो होता है जो आपका सच में एकदम आपको सच्चे दिल से आपको चाहे कि भाई आप आगे बढ़ो, और इसीलिए वो आपका सबसे बड़ा क्रिटिक भी होता है। सच्चा दोस्त वो जो आपकी गलती पर आपको रोके, आपके गिरने पर आपका हाथ थाम ले, आपकी खुशी में आपसे भी ज़्यादा खुश हो, और आपकी खामोशी में भी समझ जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर ऐसा दोस्त आपका अपना भाई या बहन हो तो समझिए ज़िंदगी ने आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता गिफ्ट किया।

किया है। और यहाँ पर मुझे याद आ रही है वो जाने तू या जाने ना फिल्म, अगर आपने देखी हो तो उसमें एक जब अदिति अपने भाई अमित से सोचती है कि भाई ठीक है किसी तरह से तो बात कर लें, क्योंकि अमित जो है बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता है और वो अपने ही कमरे में बंद रहता है, और बहुत टाइम के बाद जब दोनों आपस में बात करते हैं तो अमित बस अदिति से एक ही बात पूछता है कि भाई तुम्हें याद है पापा की किस तरह से पोस्टिंग हुआ करती थी अलग अलग शहरों में, और फिर हर बार घर बदलना पड़ता था, नए दोस्त, नए स्कूल, सब कुछ चीज़ें नई। और अदिति को भी लगता है कि हाँ बहुत कुछ सब बदल गया था। अमित को अदिति के हर दोस्त का नाम याद था, और जब अमित उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे किसी भी दोस्त का नाम याद है, उस वक्त अदिति रियलाइज़ करती है कि उसे एक्चुअली में अपने भाई अमित के किसी भी दोस्त का नाम तक याद नहीं है। नाम तो क्या, उसे ये भी याद नहीं है कि अमित का कभी कोई दोस्त था भी या नहीं। और तब अमित कहता है वो इसीलिए अदिति क्योंकि तुम इकलौती मेरी दोस्त थी। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए तुम्हारे बहुत सारे दोस्त तुम्हारे करीब आ गए और मैं दूर हो गया, और इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा ये भाई तुमसे दूर हो गया है, पर मैं कभी तुमसे दूर हुआ ही नहीं। और बस ऐसे ही कुछ समय के साथ कई बार ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में हमारे साथ भी हो जाता है, लेकिन ये रिश्ता दिल से दिल का है, सिर्फ धागे का मोहताज नहीं है, किसी एक दिन का मोहताज नहीं है। जब भी मन करे, जब भी अपने भाई या अपनी बहन से लड़ने का मन करे तो आपको पूरा हक है, फ़ोन उठाइए या मैसेज करिए, लेकिन टच में ज़रूर रहिए। इसी बात के साथ आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

तो दोस्तों इस रक्षाबंधन राखी की इस छोटी सी डोर को सिर्फ रक्षा का वादा मत समझिएगा, इसे समझिए बचपन की उन शरारतों की डोर, उन यादों की डोर, वो भरोसे की डोर और उस दोस्ती की डोर जो उम्र के साथ और मजबूत होती जाती है। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता शायद दुनिया की वो पहली दोस्ती होती है जिसे हम नहीं चुनते, लेकिन हम उसे किसी भी कीमत पर खोना भी नहीं चाहते। तो बस आज इतना कह दीजिए, लड़ते रहेंगे, नाराज भी होते रहेंगे, लेकिन तू है ना, बस यही काफी है।

दोस्तों बता दूं आपको कि ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार और मैं मिलूंगी आप सभी को अपने पिटारे के साथ ठीक 6:15 पर कार्यक्रम अंदाज़े बयां में। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

दोस्तों नमस्कार और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एफएम रेनबो चैनल पर। आप इस वक्त सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मुंबई का एफएम रेनबो मुंबई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। और आइए सजाते हैं महफिल अंदाज़े बयां की, जहां लफ्ज कम है और एहसास ज्यादा। गुलजार साहब लिखते हैं, सारे शिकवे जनाब उसके हैं, सारे शिकवे जनाब उसके हैं, दिल पर सारे अजाब उसके हैं। अजाब यानी कि जो दुख होता है, जो दर्द होता है, तो दिल में जितने भी दर्द हैं वो भी उसके हैं। तो वो लिखते हैं कि सारे शिकवे जनाब उसके हैं, दिल पर सारे अजाब उसके हैं, वो याद आए तो नींद नहीं आती, और नींद आए तो सारे ख्वाब उसके हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। आज अगर हम अपने आसपास नजर डालें, और आसपास ही क्यों, अगर हम अपने अंदर भी एक बार झांक कर देखें, तो भले ही हम इस दुनिया के भाग दौड़ में भाग रहे हैं, फोटो के लिए हंस रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों आज भी अंदर से वो एक खालीपन जो है वो हम सभी न जाने क्यों और किस बात की तलाश में है। कभी रुक करके देखिएगा दोस्तों, आसपास के लोगों में दिखाई देगी आपको ये बात। हर कोई समय पर पहुंचना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, पर उसके आगे क्या किसी को मालूम नहीं। अगर हम लोगों के अंदर जरा सा झांक भर लें, तो हम पाएंगे कि हर शख्स हंसने से ज्यादा किसी के साथ जी भर के रोना खोज रहा है।

बहुत कुछ लिख लिख कर मिटाया है मैंने, बहुत कुछ लिख लिख कर मिटाया है मैंने, ठीक ना होने पर भी अपना हाल ठीक बताया है मैंने। बात बात पर अपने दिल को बहलाया है मैंने, अपनी ही सोच में खोकर न जाने कितनी रातों को जाग जाग कर बिताया है मैंने। कोई समझेगा नहीं हाल मेरा बस इसी फिक्र में, कोई समझेगा नहीं हाल मेरा बस इसी फिक्र में, सबसे सब कुछ छुपाया है मैंने।

गली में खबर लगी है, गली में खबर लगी है कि उनको नजर लगी है। गली में खबर लगी है कि उनको नजर लगी है, लगी है मेरी ही नजर और मुझे ही फिकर लगी है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां और आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसे देख करके मुझे पूरा अंदाज़ा हो गया है कि आज आपको अंदाज़े बयां कार्यक्रम के बाद समाचारों के उस पार

बार जो कार्यक्रम हम तुम आने वाला है उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि आज हम तुम में आपकी पसंद के गीतों के साथ साथ आपको एक बात और भी बतानी है। आपको बताना है कि आखिर वो कौन सी बात है, कौन सी वो क्वालिटी है जो आपको अपने भाई की पसंद है, या आपको अपनी बहन की वो क्वालिटी पसंद है, या वो बात जो आपके भाई ने आपको कही थी। जैसे कहते ना कि भाई जीवन की सीख मिल गई, कि कभी उन्होंने कहा होगा कोई ऐसी बात कह दी जो ना सिर्फ दिल को छू गई लेकिन वो ज़िंदगी में आगे चलकर आपके बहुत काम आई। चाहे भाई ने कहा हो चाहे बहन ने कहा हो, ऐसी वो बात वो याद हमारे साथ ज़रूर बांटिए, और साथ ही साथ बांटिए अपनी पसंद के गीत जो आज आपने भाई या बहन को डेडिकेट करना चाहते हैं। और उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8657661071, यानी कि 8657661071 इस नंबर पर।

मिर्जा गालिब साहब ने लिखा था, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। और उसी बात पर जॉन एलिया लिखते हैं, तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, तुमने आंखों में कहां देखा है।

0: अनवर फिल्म के इसी गीत के साथ आज की अंदाज़े बयां की ये महफिल होती है समाप्त। बता दें आपको कि ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से मराठी में समाचार और ठीक 7:10 पर शुरू होगा आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम।
1: गजल से पॉप तक, सूफी से रॉक तक, कनेक्शन है अपना दिल से दिल तक। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार। शाम के ठीक 7:11 का वक्त और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम का, वो कार्यक्रम जहां आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते हैं और हम बदले में आपको सुनाते हैं आपके पसंद का गाना। और आज कार्यक्रम हम तुम में, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई आज आप सिर्फ गाना मत रिक्वेस्ट करिए बल्कि उसके साथ ही साथ, आज रक्षाबंधन का पर्व हम सभी मना रहे हैं तो क्यों ना एक बात अपने भाई या अपनी बहन के बारे में भी हम बताएं। और ऐसा ही किया है विजेंद्र खटोल ने, अकोला से इनका मैसेज आया है और इन्होंने जो गाना अपनी बहन के लिए वो सुनना चाहते हैं वो तो हम सुनाएंगे ही, पर उसके साथ ही साथ ये लिखते हैं कि भाई मेरी बहन शीतल वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और उसके हाथ का खाना उसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। वैसे

विजेंद्र जी, हम भी तो खाए हैं और तब भी हम भी तो कह सकते हैं कि भाई शीतल जी के हाथ के खाने का सच में कोई जवाब ही नहीं। और आपने जो पसंद किया है गाना, फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण का पहुंच रहा है आप तक।

0: आकाशवाणी मुंबईच्या यूट्यूब चॅनलवर हा कार्यक्रम आपण कधीही ऐकू शकता. अवश्य ऐका अज्ञात मुंबई.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम, और कार्यक्रम का ये पहला गीत जो आपने सुना फूलों का तारों का, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का. और इस गीत में एक पसंद और भी जुड़ रही है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण जोगेश, ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की. और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं ये अगला गीत. इस गीत की पसंद आ रही है इंदौर से और पसंद किया है अजय साखरे ने.

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
3: दोस्तों, आपके अपने म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो मुंबई पर शुरू है कार्यक्रम हम तुम, जहां पूरी होती है आपकी फरमाइश। और हमारी आज की जो फरमाइश, अगली जो फरमाइश है वो आई है पुणे से और भेजी है राकेश माथुर ने। और साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि मेरी छोटी बहन ज्योति पर मुझे बहुत गर्व है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है और कॉलेज और घर दोनों में ही तालमेल बहुत ही अच्छी तरीके से वो संभाल कर रखती है। तो राकेश जी, आपके और आपकी बहन के लिए ये गाना

क्या कहना फिल्म का ये गीत, और इस गीत को पसंद किया शुभदा ने और साथ ही साथ पंकज मोहड़ ने। और अमरावती से पंकज मोहड़ लिखते हैं कि भाई मेरी बहन की खूबी है कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, हर मुश्किल में मेरी मदद की है, और आज भी जब भी कोई बात मुझे कहनी होती है या मन जब भी बेचैन सा होता है तो मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन से कहता हूँ। माता पिता के चले जाने के बाद उसने ही मुझे संभाला है और मेरे एक फ़ोन कॉल पर

वो मेरे घर मेरी मदद करने आ जाती है और मेरी बहन मेरी आखिरी उम्मीद है और मैं उससे ही सबसे ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ। पंकज जी, अगर आपकी ये बहन इस वक्त, आपकी बड़ी बहन अगर इस वक्त हमारे ये कार्यक्रम सुन रही है तो हम सब की तरफ से भी उन्हें नमस्कार है, उन्हें प्रणाम है, नमन है और साथ ही साथ आप दोनों को आज के रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 7:38 का वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तुम और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। और कार्यक्रम में अब आ रही है एक अलग तरंग जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत, और इस गीत की रिक्वेस्ट भेजी है फिरोज सिंगनपुरिया ने।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो

देहरादून से मुकेश वालिया की पसंद पर मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना। दोस्तों आज कार्यक्रम हम तुम में हमारे साथ बने रहे संजय पाटिल, प्रदीप अनंत कृष्णन, अजय साखरे इंदौर से, साथ ही साथ अहमदाबाद से आकांक्षा, मनोज सिन्हा, वैदही और प्रमोद चिंचोलकर का भी मैसेज हमें मिला। मैसेज आया मीना का, प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे, दयानंद गायकवाड़, पंकज महोड़, फिरोज सिगनपोरिया, राकेश माथुर, साथ ही साथ पैठन से गणेश मगर मुंगी का, दत्तात्रेय आड़त का, वेलापुर से शुभदा ने भी मैसेज करके अपना साथ हमें दिया, साथ ही साथ बलकरण वर्मा, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका अरोड़ा का मैसेज आया, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से संजय पाटिल, हीरामणि वर्मा, साथ ही साथ इंदौर से अजय साखरे, दिग्दर्शन और कविता का भी मैसेज आया था मेरठ से, और भूषण सोनावने ने भी हमें मैसेज किया था वानगांव से, और अशोक पाटिल का मैसेज आया, वैदही ने भी हमें मैसेज किया, राजेंद्र परमार, प्रदीप और साथ ही साथ अंधेरी ईस्ट से अंजू ने भी हमें मैसेज किया। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको दो गाने बैक टू बैक, और इसी के साथ कहूँगी आप सभी को टाटा बाय बाय, इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात, और एक लेती हूँ एक वादा आप सभी से कि हमारी अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख्याल। और फिलहाल स्टूडियो में आ गई है आरजे रीटा, क्योंकि वो लेकर आने वाली है कार्यक्रम रॉक विद द जॉक, और उसके लिए आपको बने रहना होगा और सुनते रहना होगा आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जो है म्यूजिकली योर्स। कार्यक्रम हम तुम के ये दो आखिरी गीत गणेश मगर मुंगी और प्रकाश शिंदे की पसंद पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित

0: स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
1: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
2: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
3: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
7: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
8: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी

0: को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
2: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
5: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20

0: सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Velaval Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. H.J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Ranthi Jaiswal.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1000

545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के

जगदीप साहब की गजल नहीं पहेली है ये, और पहेली है जिसका जवाब हम सब जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सिर्फ खुशी हो और गम ना हो, क्योंकि सचमुच दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहां सिर्फ खुशियां हों और कहीं मातम ना होता हो। जिंदगी है, जिंदगी में हर तरह का रंग होता है, और ऐसे ही जिंदगी के तमाम रंगों के साथ, खुशियों से लेकर गम तक, तमाम जितनी बातें, जितने जज्बात, जितने एहसास हैं, उन सबको यहाँ इस प्रोग्राम में जगह दी जाती है जिसका नाम है रंग महफिल। साथ में गजलें, गीत और ऐसे अल्फाज, ऐसे नगमात जो हम सब की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं छेड़ते चलते हैं, हमारी सब की ज़िंदगी के साथ उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है ना। तो इस प्रोग्राम में विकास आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत अभिनंदन करता है, और आपको ये कहना चाहता है कि आपके साथ की वजह से ही FM रेनबो की ये रंग महफिल इतनी रंगीन है। अपने साथ को, अपनी मोहब्बत को, अपने एहसास को हमारे साथ बनाए रखिएगा। और फिलहाल एक बहुत खूबसूरत ख्याल पिछली गजल में था, और एक और बेहतरीन ख्याल इस गजल में भी है। सुमन राय कुछ कह

है ना कमाल की बात, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने आईना रखना, क्योंकि ये सच है। हम दूसरों से नाराज होना बखूबी जानते हैं, जब चाहे मौका ढूंढ लेते हैं किसी से भी कोई भी नाराजगी पा लेने का, लेकिन जब हम वैसा ही कुछ करें तो हमें लगता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है ना। इसलिए किसी से नाराजगी हो, किसी से कोई गिला हो, शिकायत हो, कोई भी ऐसी बात जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हमारे साथ कर देते हैं और फिर हम नाराज़ हो जाते हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि क्या कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो छोटी मोटी बातों को क्यों दिल से बांध कर रखना है, आगे बढ़िए और ज़िंदगी को खुशी खुशी जीने के तमाम मौक़ों की तलाश कीजिए, बजाय इसके कि हम नाराज़ होते फिरें, है ना। क्योंकि हमें सब मिल जाते हैं, हर तरफ भीड़ मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते जिनसे हम बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं, जिनसे हम मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं, है ना। इसलिए कद्र करना सीखिए लोगों की।

इतनी बेहतरीन गजल के बाद एक बेहतरीन बात आपसे कहने के लिए लेकर आया हूँ मैं। ये किताब मेरे हाथ लगी है, जीपी गंगवार साहब इसके लेखक हैं और किताब का शीर्षक है, टाइटल है, मैं तुम में कैद परिंदा हूँ। और उसके एक पेज नंबर 42 पर एक बहुत ही बढ़िया बात है कि वो कहते हैं कि उनकी नज़रों में छुपा है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, उनकी नज़रों में छुपा है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, कौन कहता है कि वो रहते हैं मुझसे खफा, दिल ही दिल में सोचते हैं मुझसे मिलने के लिए, चोरी चोरी देखते हैं वो मुझे लाखों दफ़ा, याद करते हैं वो शायद तो आती हैं मुझे हिचकियाँ, दूर से ही क्यों ना हो पर मिलती है मुझको वफ़ा। और ऐसी वफ़ा आपकी जो है वो मुझे भी मिला करती है। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं देखता हूँ कि आपके मैसेजेस लगातार मेरे तक पहुँच रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए। ये बात अलग है कि हम इस प्रोग्राम में ज़्यादा मैसेजेस लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वक्त मिला तो मैं ज़रूर आपसे कोई ना कोई बातें जो है वो करूँगा और आपकी बातों को सब तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल एक और बेहतरीन सी गज़ल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कहानी है प्यार की, सुना रहे हैं पंकज उदास। विकास के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल आकाशवाणी के रेनबो पर।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube।

फिल्म हिमालय की गोद और मुकेश साहब की आवाज़, और इस आवाज़ इस गीत में जो एक सवाल है उसका जवाब कुछ यूं दिया जा सकता है कि तुम खुली हवा में उड़ते हो, मैं तुम में कैद परिंदा हूँ।

खुली हवा में उड़ते हो, मैं तुम में कैद परिंदा हूँ, तुम किसी और पे मरते हो और मैं तुम्हारी खातिर जिंदा हूँ। मेरा तुम्हारा मेल ही क्या, कुछ दिन का ही तो नाता था। तुम बड़ी हवेली की शहजादी, मैं छोटे घर का बाशिंदा हूँ। भूल गया था प्यार में पड़ के, है मेरी औकात ही क्या, ऐसी हिमाकत कर बैठा जो आज तलक शर्मिंदा हूँ। ऐसी हिमाकत कर बैठा जो आज तलक शर्मिंदा हूँ।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वाह क्या शानदार गजल है नगीर साहब तो हैं, और उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ और उनके अल्फाज सब बहुत बेहतरीन, कमाल के। और इसी से मुझे याद आया कि चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते हैं कि किस राह गुजर के हम हैं, चलना ही होगा, अब तो चलने की बारी है, क्योंकि वक्त और ये घड़ी इशारा कर रही है कि अब आपसे विदा ले ली जाए। रात के 11:54 हो चुके हैं और अब कुछ एक जमा हमारे खाते में 6 मिनट हैं आपके साथ बिताने के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे अब आने वाली दूसरी एक बेहतरीन गज़ल जो मैंने हरिहरन साहब की आपके लिए एकदम तैयार करके रखी है उसके बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर करूँगा कि कोशिश की कि आपके लिए अच्छी प्लेलिस्ट बनाई जाए, कोशिश की कि आपके साथ अच्छी बातें की जाएँ, कोशिश की कि आपका कुछ गम अगर हो कहीं तो उसे भुलाने में मददगार बने, कोशिश ये भी की कि अगर हो सके तो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का हम एक छोटा सा हथियार, एक औजार बने। तो अगर इस कोशिश में हम कामयाब हुए हों तो ज़रूर अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपनी मोहब्बत दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले महीने, कब कहाँ कैसे वक्त ज़रूर बताएगा, मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए

एफएम मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें लगभग 20% कम है। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रगति के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2020 परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के बयो आनंद योजना शुरू करने जा रही है। इसमें ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्गों को खाली समय में इंडोर खेल और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का माहौल मिलेगा। और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकस से हो रहा है। ये थे रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त कुसुम। और लीजिए अब सुनते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आकाशवाणी रेनबो इंडिया पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स

अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हरदम इस मोहिनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूं।

एफएम मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इसमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में

देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से भारत में उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें लगभग 20% कम है। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रगति के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC NET 2026 परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से हो रहा है। हॉकी, इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में हुए FIH महिला हॉकी विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को 50 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला एशिया कप का 10वां संस्करण आरंभ हो गया है। ग्रुप एक के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग की महिला टीम को 6 रन से हरा दिया है। ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। और लीजिए, अब समय है बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम का, और वो है सुहानी रात।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें लगभग 20% कम है। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और

नमस्कार, प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें लगभग 20% कम है। देश की औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: तुम्हारी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 3री उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ

कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाय
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।